ऐसा हर सेवी नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेवी नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास, मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैद रखे जनदासा, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तक काल कटासा, सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पे कहिए,

आस प्यासी से जे आवा आगे से बां के न भावा क्या जाना क्या होए गारी माई हर दर्शन।

0: दूर चले गए ता चौधरी सिखां दे गुरधामां दी बेअदबी करके दिल दा साड़ कढ़न लगी। पर खालसा जी, सिख कौम सिदकी परवानियां दी कौम है ते परवाने कदे भी मौत तों डरिया नहीं करदे, अपने प्यार पिछे जान कुर्बान कर देंदे हन ते कुर्बानियां तों बाद इनकलाब आउंदा है। इनकलाब नहीं कदे भी रुक सकदा, ए पता नहीं कदों तरथल पै जाए, अत्याचार सरकारी भी नहीं रहना, ए भी पता नहीं कदों क
1: ठल पै जाए।
0: ओ कौम नहीं मारिया मुक सकदी, जिस कौम नू मरन दा झल पै जाए, मुल पेंदे ने सदा कुर्बानियां दे पावे अज पै जाए ते पावे
1: कल पै जाए।
0: जदों लाहौर दे गवर्नर खान बहादुर जकरिया खान ने सिंघा दे सिरां दे मुल रख दिते, ता लालच विच आके मंडियाले दा चौधरी मस्सा दीन रंगड़ लेके पुलिस दियां गार्दां सन 1740 ईस्वी नू अल्लाहु अकबर दे नारे लाउंदा होया आ हरिमंदर साहिब ते काबज होया। पापी ने पावन बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू पाड़ के लीरां लीर कर दिता ते पावन बीड़ दी थां अपना पलंग डाह के बह गया। बाणी दी थां नाची गंदे गाने गाउण लगी, अमृत दी थां शराब ते देग दी थां बकरे हलाल होण लगे। जालम हुक्का पी पी के पान चब चब के थुक दियां पिचकारियां पर कर्मां विच मार दे। जालमां ने मिट्टी पा पा के पावन सरोवर नूं पूरना शुरू कर दिता। जदों ए हालत पिंड कंग दे रहण वाले सरदार बुलाका सिंह ने देखी तां सिंह दे सीने विच अग लग गई, पर किसे सियाणे दे कहण ते दिल नूं काबू विच रख्या ते जंगी खालसे नूं खबर करन वास्ते तुर पिया, क्योंकि सिंह उस वक्त पहाड़ां दियां कुंदरां या जंगलां बेलियां विच लुक छिप के अपना समां गुजार रहे सन। सिंह कंसोआ लेंदा होया बीकानेर दी धरती ते पहुंचया ते उत्थे जाके बाबा शाम सिंह नारली ते जथेदार बुढ़ा सिंह जी नूं मिलिया। जदों जथेदार बुढ़ा सिंह जी ने पंजाब दा हाल पुछया तां सरदार बुलाका सिंह दियां अखां विच पानी आ गया। जिस तरह सरदार बुलाका सिंह रो रो के हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दा हाल दस रहा है, उस समय दे दर्दनाक दृश्य नूं बड़ू साहिब दियां बीबियां दा ढाडी जथा आप जी दी सेवा विच हे

अगला सवाल कि ये भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन किथे है, ये भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

कर अपने ऐसी लाल तुझ दिन कौन करे पत पवित्र लिए कर अपने सगल कर्त नमस्कारो सगल कर्त नमस्कारो।